0: पता हमें है कहानियां हैं कहानी में हम पम्पररररर
1: Your favorites from the 90s.
2: मेरा दिल भी कितना पागल है.
1: 2000s.
3: दिल डूबा.
1: And today, East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: Australia's premier Asian mix.
1: ओ हीर की खातिर मर गया राजा छोड़ के तख्त हजारा
2: सो व्हाट
1: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी
2: बिग डील ड्यूड
1: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी दिन भर सेक्टर 17 भाई दिन भर सेक्टर 17
2: ओ मैन
3: मैनू नी चाहिदा कोई राजा
2: चल झूठी
3: नारा छे दी यारी तेरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा
2: हाय चुकले रब्बा मैं

0: यह है सब।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, आफ्टर सो मेनी इयर्स मैंने ये गाना कभी नहीं सुना, जोहार महमूद इन हांगकांग का, प्लीज दूसरे भी महमूद के गाने दो ना, साधु और शैतान का, प्लीज डियर, थैंक यू सो मच, महमूद के गाने दो प्लीज डियर, महमूद के गाने दो, थैंक यू डियर सो मच।
2: महमूद के, ओके ठीक है। महमूद पर वैसे बहुत कम ही फिल्माए गए थे, पर मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह, करूंगी, आई विल सिलेक्ट देम फॉर यू।
3: जी हमने भी विनस और जुपिटर को एल्डोरेट में देखा। समीम साउथ अफ्रीका का बहुत बहुत शुक्रिया, उसका इन्फॉर्मेशन की वजह से हम भी वो देख सके। समीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और अब देखते हैं कि जतिंदर क्या कहती हैं। जतिंदर ने भी मैसेज भेजा था थोड़ी देर पहले।
4: हेलो प्रवीण जी, वेलकम, सारे नमस्कार। रवि किन्ना सोहना गाना वा, शोले फिल्म दा धर्मिंदरा ते अमिताभ बच्चन जदों उन्हां नूं जेल हुंदी आ उदों गा रहे हुंदे आ।
2: नहीं, मेरा ख्याल है ये जौहर महमूद इन गोवा, वो उस फिल्म का है। रमेश हरिया, ये दो दीवाने दिल के महमूद और आईएस जौहर गा रहे हैं, जौहर महमूद इन गोवा। वेल डन रमेश हरिया, ये बिल्कुल ठीक है। उनको पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है, अच्छा ये फिल्म का है। और ये जो है नाजनीन, एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज ग्रोइंग ओल्ड इज विजडम एंड ग्रोथ। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जो सीनियर लोग होते हैं उनमें विजडम और ग्रोथ होती है। समीन, एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, जी बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके जजमेंट्स होती हैं। अब दो तीन दिन हुए हैं, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये इनके रिमार्क्स हैं, जजमेंट तो नहीं है पर रिमार्क्स हैं, कि अगर एक मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष, मर्जी से जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इसको लेकर उनके चरित्र पर हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंसेंशुअल है, दोनों की मर्जी से वो इकट्ठे हैं और दोनों की मर्जी से ये ताल्लुक बना है। इट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर जजिंग समवन्स कैरेक्टर। कहते किसी का कैरेक्टर देखना है आप, उस पर ये बोहतान नहीं लगा सकते कि वो इकट्ठे रह रहे हैं बगैर शादी के, ठीक है। अगर ये रिश्ता फिर टूट भी जाए कि वो थोड़ी देर रहे, टूट गया रिश्ता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि वो गलत था। इट वॉज नॉट रॉन्ग एंड यू कांट अ कैरेक्टर असैसिनेट बिकॉज समबडी स्टेड, टू पीपल स्टेड टूगेदर। समझना, आपको क्या लगता है ऐसे फैसले अगर हुए तो फिर शादी की क्या रह जाएगी कीमत, शादी की कदर रह जाएगी, क्या होगा?

और जैनुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। अमीर अली राना कहते हैं कि परवीन जी महमूद का एक गाना था फिल्म शबनम, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। ठीक है, मैं वो आपको आगे सुना दूंगी। और रसिला सैटर्न एंड द मून टुडे किसुम में कहते देखो सैटर्न और मून कितने करीब हैं। ये आज की बात है, किसुम में आपने देखा है रसिला, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम परवीन जी, खैरन भाई उमर, ये गाना ये दो दीवाने दिल के चले फिल्म है गोवा, आईएस जौहर इन गोवा, महमूद इन गोवा, किसी इस तरह की फिल्म थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक और। जी हाँ।

0: और आयारे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आए थे बिल्कुल नहीं है, महमूद की फिल्म नहीं है। और मंजुला विश्वकर्मा ने कहा है कि संजीव कुमार पर फिल्म आया गया था। बिंदु फ्रॉम इंडिया, आपने सही जवाब दिया है, सिनेमा घर का नाम क्या था। यासर, आपने कहा है कि आज तारीख में सुंदर पिचाई जो समय गूगल के सीईओ हैं, अल्फाबेट और गूगल के, इनकी उम्र सिर्फ 54 साल है एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ बोथ, ही इज़ एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन, आज के दिन पैदा हुए। और आज के दिन 1921 में हैरी थूकू, उन्होंने यंग किकुयू एसोसिएशन बनाई थी ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ, क्योंकि वो ज़मीनें हड़प रहे थे और जबरन लोगों से काम करवा रहे थे, फोर्स्ड लेबर, और जो किपांडे सिस्टम हुआ करता था उसके खिलाफ उन्होंने यंग किकुयू YKS शुरू की थी, किकुयू एसोसिएशन। यासर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे आते हैं, अमीर अली राना, जो गाना आपने कहा है तुम ही मेरे मीत हो, मैंने आगे जी रखा है, आप सुन पाएंगे। सोनल मोदा, यू एंजॉयड द सॉन्ग्स, आई एम सो हैप्पी। और मनहर ने भी कुछ कहा था जो कि हम सुना नहीं पाए थे तब।
1: हेलो, मनहर पटेल बॉम्बे में, वो सिनेमा घर गुरु का नाम है मराठा मंदिर। थैंक यू मनहर पटेल की सुमो।
0: नहीं, ये नहीं है, मराठा मंदिर की हम बात नहीं कर रहे, सो ये आंसर गलत होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगी कि आंसर एक्चुअल क्या है, लेकिन महमूद की फिल्म से एक गाना।

सिनेमा घर को लेकर किसी ने कहा है कि अब अपना सवाल दोहराइएगा. वैसे मेरे सवाल बड़े लंबे होते हैं इसलिए उनको दोहराना जरा मुश्किल होता है. खैर ये सिनेमा घर 50 साल पुराना बहुत अपने जमाने का जदीद किस्म का बहुत लागत आई थी इसको बनाने में लेकिन बनाने वाले का मकसद था कि सबसे ब्यूटीफुल मॉडर्न लेटेस्ट सिनेमा घर बने 50 साल पहले यूनिक आर्किटेक्चर बाहर से मंगवाए गए आर्किटेक्ट्स. तो वो मैं पूछ रही थी कि वो हैं वो सिनेमा घर का नाम क्या है. आप मुझे बता रहे हैं सिनेमा घर कौन सा था. और यहाँ पर हैं एरी निंदिया मूवी कुंवारा बाप. आरी निंदिया ओके ज़रा मुश्किल है. परवीन जी जस्ट क्यूरियस व्हाट हैपेंड टू अश्विन दोषी. जिस दिन वो मुश्किल वो बिजी हों तो वो नहीं आते हर रोज़ तो क्योंकि अश्विन दोषी का बिजनेस है. प्यार अली भाटिया के मैंने कई गाने कई कॉल्स मैंने सुनाई हैं. जब ज़्यादा दूसरी आ जाती हैं उनको भी चांस देना पड़ता है सो फॉर दैट रीज़न. लेकिन अश्विन दोषी जब भी हो वो आते हैं. कल तक तो थे कल भी मेरे ख्याल से. और अगर वो ना आए तो मुझे पता है कि वो मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं.

तलत महमूद कसमिन ये शाहकार था। और आरफा फ्रॉम मंगाटा रुंगाई, वो कहती है देखा आपने कि लिसनर्स लिसनर्स को मिस करते हैं, दे ओन द प्रोग्राम द लिसनर्स। ये बिल्कुल सही है समिन, जैसे आप लिसनर्स हैं ना, आप अपना फर्ज समझकर कॉल करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, मैसेज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि उसके बगैर भी मैं कर सकती हूँ प्रोग्राम, लेकिन आपके साथ चार चांद लग जाते हैं, वो अकेले नहीं हो सकता किसी के लिए भी। एक होता है सुनने वाला, एक होता है सुनाने वाला, सो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आंसर देने वाली थी, लखबीर ने गाए राज मंदिर, जी समिन आंसर राज मंदिर इन जयपुर है, मंजुला विश्वकर्मा उनकी बहन उन्होंने भी कह दिया था कि जयपुर में है। और रसिला, द सिनेमा फीचर स्टनिंग कार्व्ड सीलिंग्स, ग्रैंड शैंडेलियर्स एंड वाइब्रेंट कलरफुल कार्पेटिंग, जैसे मैंने कहा कि लाल कालीन बिछाए उन्होंने, बड़े बड़े फानूस लगाए, शैंडेलियर्स, द वाइब नोन फॉर बॉयस्टरस क्राउड्स हूटिंग सिंगिंग ड्यूरिंग द बॉलीवुड रिलीजेस, इट ऑफर्स अ ट्रेडिशनल फैन सेंट्रिक सिनेमा, मतलब जिसमें फैन मरकज में है, जो फैन है अदाकार नहीं फैन, एटमोसफियर लोकेशन अशोक नगर नियर धार। अच्छा नहीं, ये वाइब की बात नहीं कर रही मैं रसिला, आई एम टॉकिंग अबाउट राज मंदिर। और सलीम मेहर, व्हाट अ फैबुलस सॉन्ग बाय तलत, थैंक यू सलीम मेहर, बिल्कुल सही आपने कहा। और हेलो जी, इज इट राज मंदिर इन जयपुर, आई हैव बीन देयर, आई वेंट देयर इन 1983, इट इज़ ब्यूटिफुल। और आप कौन हैं कहने वाली, रेशमा, रेशमा बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप गई हैं समिन, दिस इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विद अस, कि मैं वहाँ गई थी, मुझे ऐसा फील हुआ, ये हुआ, मैंने देखा इस तरह का शानदार सिनेमा, 1983 रेशमा विजिटेड इट। सो राज मंदिर एक हिस्टोरिक है सिनेमा।

0: शुक्र है खींची नहीं है, जी चाहता है। मोहम्मद रफी साहब का गाना। रितु गुप्ता आपने सही जवाब दिया था और साथ नीला शेठ ने भी कहा था राज मंदिर, कहते आई हैव सीन इट, हम आपके हैं कौन विद माय फैमिली इन इट। अच्छा आई हैव सीन हम आपके हैं कौन, अच्छा अच्छा आपकी फैमिली के साथ आपने ये फिल्म इस राज मंदिर में देखी थी नीला शेठ, गुड। रमेश हरिया ने चंद मिनट पहले ये भेजा था।
1: आप जो सिनेमा की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से जयपुर में है राज मंदिर सिनेमा। हम लोग जब राजस्थान घूमने गए थे तब भौमिक ने बताया था हमको कि ये इंडिया का मे बी या एशिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा है, उसकी जो कला कारीगरी है अंदर से। हम फिल्म देखने भी गए थे लेकिन ज़्यादा देख फिल्म से ज़्यादा देखने और सिनेमा घर को देखने में मज़ा आया था। जो हिसाब से उन्होंने बनाया है वो अद्भुत है। शुक्रिया रमेश हरिया।
0: रमेश इसलिए शायद कहते हैं कि इट्स अ फैन सेंट्रिक सिनेमा। अमीर अली राणा आपने कहा परवीन जी एज यू सेड दैट यू कैन प्रोड्यूस द शो बाय योरसेल्फ, सो ट्रू, बट बेमिसाल अंदाज इज अ फैमिली एंड ऑल लुक आउट फॉर ईच अदर। मैंने कह दिया है कई बार, वाकई एक दूसरे की व्यूज सुनने के लिए हम तरसते हैं। एज फॉर टुडे शो आई हैव टू एडमिट दैट यू आउट डिड योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे। अमीर अली बहुत मेहरबानी आपकी। और दिनेश शाह गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। राज मंदिर जयपुर शहर में है, इट रैंक्स थर्ड अमंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सिनेमाज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा दिनेशा ये नहीं पता था कि थर्ड है दुनिया के सिनेमा में ये राज मंदिर, और देखें 50 साल पहले किसी ने बनाया और क्या शानदार बनाया। और आप कौन हैं
2: प्रवीण जी? जब मैं बिंदु के पास गई थी तब हम लोगों ने वो राज मंदिर थिएटर देखा, लाजवाब थिएटर, उसमें लाजवाब पिक्चर देखी गोलमाल।
0: अच्छा अच्छी थी फिल्म, मुझे लगा इसके नाम से ही कि ये कुछ फजूल सी है।

0: समय करीब 10 गाने मुझे रिप्लेस करने पड़े हैं क्योंकि महमूद साहब अचानक टपक आए और कहती हैं रसिला व्हाट अ सुपर्ब प्लेलिस्ट आई एंजॉयड ईच एंड एवरी जेम अच्छी बात है और एक मैसेज भी आया है
1: राज मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है और मैं जयपुर में ही रहती हूँ तो मेरे घर से तो बहुत पास में है और मेरे घर जो भी आता है तो उसको राज मंदिर दिखाने ले जाते हैं पिक्चर चाहे कोई सी भी चल रही हो उससे मतलब नहीं होता है केवल हॉल दिखाने के लिए हम लोग जरूर जाते हैं
0: क्या बात है बिंदु मुझे पता आपने कहा था आप जयपुर रहती हैं तो फिर मैंने कहा आई एम नॉट श्योर इफ शी सेड जयपुर या किसी और लेकिन आपने कहा है कि आप राज मंदिर ज़रूर अपने मेहमानों को दिखाने ले जाती हैं वंडरफुल सैमन अगर आपने जयपुर जाना हुआ बता दीजिएगा मुझे मैं आपको बिंदु का पता दे दूँगी एटलीस्ट एक विजिट आपकी फ्री होगी अब मैं चलती हूँ समय आगे नीलूफर आ रही हैं मुझे इजाज़त दो गाने

अर्ज है, कुछ मजनू बने कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: What a fantastic track. It's playing for you on East FM, Kenya's Premier Asian Mix, 47 minutes past one, and it's time for
1: Dil Se Keh Do
2: on East FM, Kenya's Premier Asian Mix.
0: Dil Se Keh Do is all about simple things. Simple things in your heart, in your mind, in your soul. Something you want to talk about, something you want to share. So today I'm going to keep it very, very simple. And like yesterday, maine pucha tha ki matlab aisa kaun sa गाना है जो आपको मोटिवेट करता है. दैट इज़ वन ट्रैक, वन बॉलीवुड सॉन्ग विच मोटिवेट्स यू ऑल द टाइम. सो टुडे गेटिंग अवे फ्रॉम मोटिवेशन, आई विल स्टिक टू मोटिवेशन बट नॉट म्यूजिक वाइज. बट वी ऑलवेज हैव दिस वन कोट, जिसे कहावत कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में कहते हैं कोट, जो हम पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं. ऐसे आप कई कोट्स पढ़ोगे, बोलोगे, देखोगे, सुनोगे, बट एक कोट जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. एंड वेन एवर it becomes your personality as well. Like for me, example, I'll give you my example so you understand. I read a lot of quotes. I share also on my socials and stuff like that. But there's one quote which I followed this for the rest of my life, from the time I have seen life realistically as an adult, is live and let live. जो काफ़ी दूसरे इंसान फॉलो नहीं करते, उनको अपनी बड़ी सी नाक दूसरों के मामले में घुसाना बहुत अच्छा लगता है. मेरा वो नेचर है ही नहीं. लाइक यू विल से ये अभी अपनी हाँक रही है, बट दैट्स अ फैक्ट. आई डोंट लाइक इंटरफेयरिंग इन पीपल्स लाइफ अंटिल समवन कम्स एंड टेल्स मी येस दिस इज द थिंग एंड वॉन्ट्स टू डिस्कस और नीड्स माई सपोर्ट और एनी थिंग एडवाइस. बट अदरवाइज आई स्टे अवे. करो यार, आपकी लाइफ है, जो करना है करो, अच्छा बुरा दैट इज योर कर्मा एंड दैट इज यू. बट a lot of people who don't follow this, but I try to. So that's always been my funda. Let's call it funda, okay? In a very simple English quote, funda. Live and let live. What is yours? Let me know. Give me a call, 0711-046-106, or you can WhatsApp me on 0701-106-106.
2: East FM.
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
1: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday, 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, 3rd Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now, 0721-974-444.

0: song is one of my favorite because I'll tell you reason. It was good to see Nana Patekar back in action. You know, he is one of those very rare actors in Bollywood, rare gems, very, very talented. And talking about gems, yes, that's exactly what my friend also has shared with me, that his quote is that a gem can only value another gem. That is so, so true. And I think that also goes for you. And Inderjeet, you're saying that your quote is never trust a hyena with meat. Very good. Sonal is saying today is a new day. Even if you were wrong yesterday, you can get it right today. That is very well said. And I've got another one, that in a world where you can be anything, be kind is what you follow always. Suresh, that you said that. And thank you for tuning in. You're saying you're loving the music and I'm loving your company as well. I've got another one just came in, Meena. You're saying live with gratitude and leave no regrets. Live life with no regrets. I think that is one thing I follow. You know, sometimes the people, when you share with them a certain incident of your life, for example, anything, like, you know, any downfall, forget the success, the down moments, and they'll say like, oh, I'm so sorry. I tell them, no, why? I'm not sorry, I'm fine, because that was meant to be, that was my destiny. I have no regrets and I'm gonna move on. I think that's very, very important. Yes, there will be down days where you are disappointed, where you feel there is no reason to live life again, but then you know what, as Rasila said, or even Sonal's quote, there's always a new day tomorrow. If it didn't work out today, it will work tomorrow, and if it didn't work tomorrow, it was never meant to be. Trust me, these little things, actually, they're just not fundas or quotes, they make a big difference in our lives. Thank you so much for Dil Se Kehne Ke Liye on Dil Se Keh Do on Retro to Right Now with Nilufar on East FM.
1: East FM with news from Kenya, Asia and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफएम पर बुधवार की खबरें, पहले खबरों की सुर्खियां। स्कूल यूनिफॉर्म्स की खरीदी पर नया कानून, रेवेन्यू की तकसीम पे सेनेटर्स की बहस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान मुअत्तल, माइग्रेंट्स के अगवा पे जांच। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है कि स्कूलों में वालदैन को इजाजत दी जाए कि बच्चों के यूनिफॉर्म्स खुली मंडी से खरीदें, इनको मजबूर न किया जाए कि स्कूल की बताई हुई दुकानों से ही खरीदे जाएं यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स की सप्लाई पे चंद अफराद का कब्जा कबूल नहीं होगा। सेनेटर्स 428 बिलियन शिलिंग के रेवेन्यू पर इत्तफाक नहीं कर पाए। इनकी मर्जी है कि नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को काउंटीज निभाएं, इंसाफ पसंदी से रकम दी जाए। और केनियंस ने मिला जुला रद्द अमल दिया है कि शुरू होने वाले वर्ल्ड कप पर, जिसकी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका मेजबानी करेंगे। नए कोचेस, स्टेडिया और खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केन्या के दर्शक। आलमी खबरें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने आला प्रोसिक्यूटर करीम खान को मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया है, जिसके खिलाफ बदसलूकी की जांच हो रही है। आईसीसी के 125 मेंबरान वोट डालेंगे। खान पे महिलाओं को हिरासा करने के इल्जाम हैं, जिनको करीम खान मुस्तरद करते हैं। एक साल से आप छुट्टी पे हैं आरोपों को गलत साबित करने के मकसद से। बीबीसी की खबर है कि गए साल 300 माइग्रेंट्स जो यूके मुलाजमत की तलाश में जा रहे थे को अगवा कर लिया गया। इनके साथ हिंसा हुई और तावान यानी रैंसम की मांग की गई। धमकी दी गई कि अगर 3,700 पाउंड का रैंसम नहीं दिया गया तो उनके गुर्दे यानी किडनीज निकाल लिए जाएंगे। लीबिया में किडनैप हुए सभी इराकी कर्ड्स थे। पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में दर्जनों कश्मीरियों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के खिलाफ की गई, जो आजाद जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के खिलाफ वर्जी के खिलाफ धरना दे रहे थे। आम शहरियों की मौत की खबर है। 19 बच्चे भी जान से गए और हमला खवातीन। आलमी जांच की मांग की जा रही है। और टोक्यो के शमाल में उत्सुनोमिया शहर के 100 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों के आसपास भालू दिखाई दिए। हुकाम शहरियों की सुरक्षा के लिए कड़े इकदाम ले रहे हैं। हंटिंग एसोसिएशन के मेंबरान शहर में गश्त कर रहे हैं। امریکی فوج پھر ایران پہ فضائی حملے کر رہی ہے ان کے جنگی اپاشے جہاز کے گرائے جانے کے بعد ریڈار سائٹس اور ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران نے 21 امریکی بیسز پہ ڈرونز گرائے یہ تھیں آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
0: Absolutely, one and only Niloufar. It's on happening because इतना सारा कुछ हो रहा है शो पे मैं भी कभी कभी सोचती हूँ मैं इतना कैसे बोल लेती हूँ मैं क्यों बोलती हूँ इतना But then I realized कि ये बोलने वाली चीज़ बड़ी काम आ गई कभी ऐसे हुआ है बचपन में जिसके लिए आपकी धुलाई हुई हो वही आपका टैलेंट काम आया मुझे इतनी पिटाई हुई थी स्कूल में आई विल नेवर फॉरगेट फॉर बींग टॉकेटिव टीचर से मम्मी से कितना बोलती हो तुम यू आर सो टॉकेटिव एंड लुक एट दिस टुडे इट्स माय ब्रेड एंड बटर विद अ लिटिल जैम

0: I hope, Sailesh, you enjoyed your song. This is your all-time favorite. It's playing for you on Instagram, Kenya's Premier Asian Mix. And right now, it's time for some bakwas.
1: Spot the bakwas.
2: On East FM.
0: Haan ji.
2: Kenya's Premier Asian Mix.
0: हमेशा की तरह थ्री स्टेटमेंट्स जो कुछ सही हैं और कुछ बकवास ओके द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फूड्स शुड बी पुट अवे इन द फ्रिज और फ्रीजर विद इन टू आवर्स फूड्स शुड बी पुट अवे इन द फ्रिज और फ्रीजर विद इन टू आवर्स ओके इज दैट ट्रू और बकवास सेकेंड वन यू कैन टेल इफ फूड इज स्टिल सेफ टू ईट बाय स्मेलिंग इट That's the second statement. Today it's food related because I'm hungry. So it's food related, okay? So that's the first statement, second statement. And the third one, steaks. Now this is for the steak meat eater can be eaten rare. Yani ke kacha. Steaks can be eaten rare. Three statements. You tell me which one is true, which one is bakwas.
3: Hit down.

0: गुड इवनिंग टू यू. कैसा रहा आज का दिन? हैप्पी मिड वीक. आज वेनेसडे का दिन है एंड आई एम श्योर वी हैव ऑल अचीव समथिंग और द अदर, बिकॉज मंडे को जो हमने बात की थी वॉज अबाउट हाउ वी आर प्लानिंग अवर सेल्व एंड हाउ आर वी प्लानिंग अवर डेज. खैर, कमिंग अप दिस आवर इज गोइंग टू बी योर मिक्स बीट चैलेंज, जहाँ पे यू हैव टू गेस द टू सॉन्ग्स आई एम लुकिंग फॉर टुडे. एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट ग्रेट ट्यून्स लाइंड अप इन द वोकल्स ऑफ वेरियस आर्टिस्ट. एंड इसके साथ साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ऑल दैट यू हैव टू डू इज कीप इट लॉक्ड ओनली ऑन द सिटी लाइट्स विद विशाल.
1: Your favorite stars.
2: This is Amir Khan.
3: This is Akshay Kumar.
4: This is Adil Vasthan.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
1: Love East FM.
6: You're listening to East FM.
7: You're listening to East FM.
8: You're listening to East FM.
9: East FM, Kenya's premier Asian mix.

That's playing for News to FM, Kenya's premier Asian mix. This is The City Lights with Vishal. And obviously, hum baat kar rahe the about movies. And, you know, everybody have got their own perception. Ki kaun si movie unko pasand aati hai, kaun si nahi pasand aati. But there is one thing. Chalo. Ek cheez hai that we all relate to. And that is the songs. So, ek aise kuch aise artists hain who have done tremendous work. And kal humne baat ki thi about you know, concerts. We've got Arijit Singh, who has done phenomenal. He sang a lot of songs and his concerts are houseful. Diljit Dosanjh has actually put Punjab on the map. So ek aisi cheez hai gaane. ठीक है, बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड मूवीज, यू नो, अगर गाने नहीं होते तो क्या होता? शेयर योर थॉट्स विद मी. इमेजिन वॉचिंग कुछ कुछ होता है और हम आपके हैं कौन और थ्री इडियट्स और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऑल दीज ब्यूटीफुल मूवीज विदाउट सॉन्ग्स, कैसा लगता आपको? एंड डू यू रिलेट टू सॉन्ग्स? क्योंकि कई बार क्या होता है, बिफोर द टीजर कम्स आउट, द ट्रेलर कम्स आउट, द सॉन्ग्स कम आउट एंड पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू दोज सॉन्ग्स एंड दे बिकम वायरल एंड देन बिकॉज ऑफ दैट लोग बोलते हैं हाँ यार ये मूवी देखनी चाहिए. शेयर योर थॉट्स विद मी. यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन 0701 106 106. अगर हमारी हिंदी मूवीज में गाने ना होते तो क्या होता? Imagine, चलो मैं गाना नहीं चाहता, but I'll do this, I'll try my best. I'm an excellent singer, but imagine, किसी की मुस्कुराहटों के वो गाना अगर ना होता तो, किसी का दर्द ले सके उधार, अगर वो गाना ना होता, what would have happened?

0: That's playing Phoenix FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal, and बहुत सारे सही जवाब आए हैं फॉर द ट्रांसलेट चैलेंज, जहाँ पे आपको पूछा था विच इज़ दिस मूवी दैट आई एम लुकिंग फॉर टुडे, एंड इन हिंदी एक वर्ड मूवी है, एंड इन इंग्लिश इट साउंड्स लाइक दिस, रोमांसेस और लव स्टोरीज. सो आपको क्लू दिया था दैट दिस मूवी स्टार्स शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन इन द लीड रोल्स, एंड वी गॉट थ्री leading ladies and men who made a debut, their debut in this movie. And aapko ek clue aur diya tha that this movie the character name of Amitabh Bachchan is Narayan Shankar. Abhi bhi mere ko na wo yaad aa raha hai scene jahan pe, chalo I know you've already guessed the movie, but abhi mere ko wo scene yaad aa raha hai jahan pe he is पहली चीज़ जब नारायण शंकर पहला सीन आता है उनका, द फर्स्ट वर्ड्स ही सेज इज परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. लाइक ओ मैन दिस इज टू गुड. सो येस, द मूवी दैट आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज नॉन अदर देन मोहब्बतें. मोहब्बत इज द मूवी आई वॉज लुकिंग फॉर. So I've got lots of correct answers that have come in. Fast and finger first, none other than Sangeeta. You have given me the correct answer. So has Rajesh, Mr. Bipin, Rasila ji, and Jayshree. All of you have given me the correct answer. Mohabbatein is the correct answer. Thank you so much for your answers and for your company. The next song is actually requested by Rasila ji, and I think it's one of the most beautiful songs ever. And taken off the movie Kal Ho Na Ho, and that's the title song. That's coming up next for you. And main aapko milunga kal. Thank you so much for your answers and for your company. And until tomorrow, aap apna khayal rakhna. And hum kal zarur milenge.
1: No one plays more of your Bollywood favorites. Batiste FM, Kenya's premier Asian mix.